0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुहोस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: फागुनदेखि वैशाखसम्म आगलागी बढ़ी हुन सक्छ। आगोको सही र सुरक्षित प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ।
3: आगोको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउ। सलाई, लाइटर, मट्टीतेल जस्ता ज्वलनशील वस्तु बाल बालिकाले भेट्ने ठाउँमा नराखौ। खाना पकाउने ग्यास सुरक्षित राखौ।
2: आफ्नो टोल छिमेकमा आगलागी सम्बन्धी जनचेतना जगाऊ। क्षति घटाउन स्थानीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरौं।
3: गाउँघर तथा शहरमा समेत सम्भव भएसम्म पोखरी निर्माण गरौं। पानीका स्रोतलाई व्यवस्थित गरौं। समुदायसँग सहकार्य गरौं।
2: खाना पकाइसकेपछि आगो राम्रोसँग निभाऊ। ग्यासको प्रयोग गर्नेहरूले चुलो, ग्यास रेगुलेटर तथा लाइटरको नियमित रूपमा निरीक्षण गरौं।
3: चुरोट बिडीको प्रयोग पश्चात आगो निभाऊ। ठुटा जथाभावी नफालौ। वन जंगल, पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको वरिपरि सलाई, लाइटर तथा आगोको प्रयोग नगरौं।
2: घरमा मैनबत्ती, धूप र दियो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ। नजिकैको दमकलको नम्बर अनिवार्य सेभ गरेर राखौ।
4: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
5: बर्खाक समय थिए बा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलश आब मुसुवा खुस्ती सब अफे आइस
6: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु घरक आँधा पाँदा झसास थिए बाहा छ कस्ता कता भिल बा काटा पर्ना रह
5: असी करी हेर बुढिया ओसिन्हो कलशे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाक बासी छाइ दोस्रा सल परिवार मने मिल्क सर सफाई करबी दोस्रा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन करबी तनी भी
6: मीठा हो बुढ़वा असिन डाला मत ध्यान घास पोहर धसवास भी था साप नुख बैठल रह सकता ना
5: वह और से कलक हो छाई समीरा छावा विवेक दुओ मई मिल्क घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से साप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में तो चबरदार दोसरा घरक आंजर पांजर पछवार सफा हुई से साफ ऐना का कम हो जाए
6: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
7: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन परे था ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
8: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सक
9: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: के तपाईलाई थाहा छ
12: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
11: हो र
12: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
11: अनि
12: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर

0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण सेयर सदस्य, सेवाग्राही, संचालक समिति, सल्लाहकार समिति, कर्मचारी वर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष टेकेन्द्र बहादुर धामी, व्यवस्थापक धन बहादुर बुढा मगर, हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, टिकापुर, कैलाली।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमंग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: अर्जुन वाच सेन्टर, बलभद्र चौक, टिकापुर, कैलाली।
1: नयाँ वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक, व्यापारी, शुभचिन्तक, दादू भैया, दीदी बहिनीहरूक्रम में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
3: हमारे यहाँ थारू पहिरन के लहंगा, चोलिया, धोती, सिलाई करना के संगे रेडीमेड भी उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल, फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: अभी फैशन बुटीक, सामुदायिक पुस्तकालय भवन, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रतीक्षा चौधरी। फोन नम्बर 9868707825।

0: वर्षसँगै नयाँ योजना, नयाँ लक्ष्य र उज्जवल भविष्यतर्फ अघि बढौं। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हिमालयन बैंक लिमिटेड परिवार, टिकापुर शाखा, टिकापुर कैलाली।
2: अधुरो सपनाको चाहना।
3: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
4: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
7: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
8: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
7: मिस्तरान बर्जनाउका ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो ना, कबू कहूँ घुम जाए त था पाए।
9: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848541436।
10: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
11: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
10: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दू। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
11: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। दौलतपुर घटवा में बनल तटबंध के ऊंचाई के विषय में स्थानीय नागरिक खुकरन के आपत्ति। पुरान ऊंचाई से तटबंध करना पुरान ऊंचाई में तटबंध करना मांग। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर के सामाजिक परीक्षण। अभिन फिर स्वास्थ्य सेवा सुधार करे पर्ना सुझाव। सुदूरपश्चिम में दशक यहां मानव जंतु के द्वंद में 3300 घटना। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अभ्यास खेल में नेपाल एसे स्कॉटलैंड पराजित। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 दौलतपुर घटवा में बंतीरलक तटबंध के ऊंचाई के विषय लेके स्थानीय नागरिकों का आपत्ति जनाइल बाटे। दौलतपुर घटवा में कर्णाल नदी किनार में बंतीरहल तटबंध चेप्ठी हुईले ओर से स्थानीय नागरिक हुकरा गुनासो करल बाटे। पहले लडिय किनार में ऊंचाई 12 मीटर रलक अब्बे 9 मीटर के कंक्रीट के टर्बन हो ओकर ऊपर 1 मीटर समेत ग्रावियर करके 10 मीटर केल रलक कहती वहां उकरा आपत्ति जनाइल बाटे। कुछ वर्ष आगे चिसा पानी में 16 मीटर पानी के बहाव पुगल बेला 12 मीटर ऊपर से पानी बहके ओवरफ्लो हुईलक ओ गांव में छेटी पुगल वही से तरे 2 मीटर चेप्ठी तटबंध बनना नहीं यहां के नागरिक फुकरन के लग दुखत रहा वहां उकरे बटोले बाटे। तटबंध चेप्ठी हुईना मजा नहीं हुई लग ओर से इस विषय में सरकार वाला हुकरन के फिर समय ध्यान दे पड़ना स्थानीय कर्मी डाँडा समाज के अगुआ सिंहराज बुढ़ा मगर के कहेबा। बरसात के समय में कुछ कई के ठाव में कर्णाल लदिया के पानी गांव पैठला से टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 है केल नहीं हुके इसे तरक वाड़ा में 6, 7, 8, 9 है फिर समेत असर करना देख पड़ल बा। इसे फिर आगे फिर समेत कुछ आसपास बरसात के समय में कर्णाल नदिया में पानी पैंट के यहां के दर्जनों परिवार हुकरण के उच्छवास करा गिल बा। अब ये तटबंध करना काम फिर समेत केहरू से फिर ओटरा अवस्था आई नहीं सकल हो कहना मां समेत अपना हुकरण डर लगती रहल। तटीय क्षेत्र के नागरिक हुकरा गुनासो कर लेते दक्षिण साहिपुर के बरघर धर्मराज जैसे के कहेबा। इठावा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना अंतर्गत के राजेन्द्र निर्माण सेवा के ठेक्का लेके तटबंध के काम करती रहल बा। अपना हुकरण जोन इस्टिमेट में काम करत बाकल से वह अनुसार नई काम करती रहल निर्माण कंपनी हुकरा बटोतियाल बाटे। काम करने क्रम में कुछ ठाव में भटकाई पर्न रलक ओरसे अब भटकाइल ओ समेत पासक समय में ठपना निर्माण कंपनी के साइट इंचार्ज ओवरसियर माधव प्रसाद लेखक के कहेबा। तटबंध करना ठाव में नई समेत भेटागिलो रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के सुपरवाइजर रामकृष्ण चौधरी अब काम इस्टिमेट अनुसार नई हुई रहो इस्टिमेट में समेत कार्य बनाइल कहना विषय में अपना हेफे समेत जानकार नहीं रलक विषय में सीनियर हुकरण संगे समेत पूछना कहल बाटे। इठाव में राजेन्द्र निर्माण सेवा निर्माण कंपनी से 2363 घन मीटर ठेक्का लैके तटबंध के निर्माण करते रहल बा। सुदूरपश्चिम में एक दशक अवधि में राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण कोष के प्राविधिक टोली से तमाम स्थान में पासो समेत पर्के 28 थो चितुआ के उद्धार करगिल बा। तराई के कैलाली और कंचनपुर संगे पहाड़ी जिला में पुग के टोली से उद्धार करगिले खो। एक बाहेक के उद्धार टोली नई पुगती समेत कैयों समेत पासो में प्रतिरला कोर से मौठविल बटागिल बा। तथ्यांग से मानव जने वन्य जंतु द्वंद फिर समेत दिन प्रतिदिन बढ़ती गैलक में स्पष्ट पर्ल बाटे। तराई हुए वा पहाड़ी जिला में वन्य जंतु के बाली नाली नोकसान करना हो मानव ऊपर नहीं समेत आक्रमण करने लगाए के घटना से द्वंद बढ़ाइल बा। राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण कोष शुक्ला फाटा संरक्षण कार्यक्रम से सुदूरपश्चिम के पहाड़ी क्षेत्र में करल अध्ययन अनुसार फे चितुआ मानव बस्ती संगसंगे समेत विचारण करती रलक देख पड़ल बा। बैतड़ी के तल्लो सोडा क्षेत्र में हुए अथवा दारचुला के चौलानी कोरिडोर अपी बेस कैंप ओ समेत दोती के महाभारत रेंज मा अधिकांश क्षेत्रमा चितुवा मानव बस्ती लगहाँ नै समेत ढ्यार विचरण समेत करलक डेट परल बतागिल बा। कर्णाली प्रदेश सरकारके मुख्यमन्त्री यामलाल कडेरसे कर्णालीकी विकासमा सहयोग पुग्ना कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा लग्न विकास साझेदार हुँकरन आग्रह गर्नबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतसे समेत वीरनगरमा आयोजना कर्लक कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत विकासकै साझेदार हुँकनसँगकै समन्वय बैठकमा उहाँका प्रदेश सरकारसे आगामी आर्थिक वर्ष 83-84 नीति तथा कार्यक्रम है सहयोग पुग्न करके समन्वय तथा सहकार्य करके आगे बढ़तिरलक सुझाव दिले बाटे विकास के साझेदार है प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संगे हुईलक काम करबेरकेल अपेक्षित नतीजा ऐना वहां बटोले बाटे प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव से कर्णाली प्रदेश में कार्यरत गैर सरकारी संस्था कर्णाली संस्था कहना समेत पोर्टल बनाके काम करबेर कौन कौन संस्था से कहा का काम करती रह कहना जानकारी लेना सहज हुई बटोले बाटे खोजखर माई गरी विश्राम विश्राम पास फिर सही भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकाप एफएम। आदरणीय अभिभावक शिक्षक कर्मचारी प्यारा विद्यार्थी तथा शुभचिन्तक सबैमा नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। यो नयाँ वर्षले यहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र सफलताको नयाँ ढोका खोलोस्। हरेक दिन नयाँ आशा नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। खड्ग मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूल तथा वर्गिस होस्टेल परिवार टिकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेडस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008। कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
3: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। तपसिल
2: प्रवेश परीक्षा फारम वितरण हुने मिति 2083 साल वैशाख 21 गते सम्म सीट संख्या 48 जना मात्र। फारम उपलब्ध हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। आवश्यक कागजातहरू कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र फोटो 2 प्रति।
3: प्रवेश परीक्षाको मिति टिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा संघको समन्वयमा तय गरी जानकारी गराइनेछ।
2: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टिकापुर 1 कैलाली प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सम्पर्क फोन नम्बर 9858441667 र 0915164111।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र टिकापुर 2 विजयनगर के सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम होलबा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य संस्था के इन्चार्ज उषा भूषाल से स्वास्थ्य संस्था हरेक महीना वाड़ा में 3 ठाव में गांवघर क्लिनिक सेवा 4 ठाव में खोप क्लिनिक सेवा देहल जानकारी कैले बाटे एक साथ परिवार नियोजन सेवा गर्भवती तथा सुत्केरी जांच लगायत के तमाम उपचार करगिले बटागिल बा। यी वर्ष वार्ड नम्बर 2 फे समेत 8 जाने लौव क्षय रोग के बिरामिया फेला परल बाटै कलसै स्वास्थ्य संस्थामा चालू आर्थिक वर्ष के 9 के अवधिमा 125 जाने से उपचार समेत उच्च रक्तचाप के औषधि खैति रहल जानकारी दिए बाटै। एक साथै 86 जहानमा ज्येष्ठ नागरिक हुक्रन हे घर दैलोमा सेवा देहल महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका से 9 महीना के अवधिमा 4,019 जहान हे सेवा देहल भूषाल जानकारी दिलबाट शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष दीपक चौधरी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगर जी से स्वास्थ्य संस्था में कर्मचारी हुकरण के सेवा मजद इति रहलक रलसफेन भौतिक संरचना जीर्ण हुई बटोईटी एकर विकास के कोशिश करना प्रतिबद्धता जनैले स्वास्थ्य शाखा कार्यालय प्रमुख बलबहादुर रावल से स्वास्थ्य सेवा के हिसाब से विजयनगर के सेवा मजा रहल बटोई थी वहां खोप केन्द्र और गांवघर क्लिनिक के समस्या विगत से लेके नई भोक्ति रलक बटोई थी स्वास्थ्य सेवा सुधार के लग सकु जहन के सहकार्य सहयोग आवश्यक रहल बटोईले बाट कार्यक्रम में सामाजिक परीक्षण कार्य के सहजकर्ता साप नेपाल के अध्यक्ष तपेन्द्र भूषाल से स्वास्थ्य संस्था में सेवा लेना आयल 20 जहन संगे सामुदायिक सेवा मूल्यांकन करना समेत आयल नतीजा जानकारी कराई रहें। कार्यक्रम के समापन वाड़ाध्यक्ष चौधरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मन से पाजीना सेवा के बारे में समुदाय स्तर में अभिन फिर जानकारी देना आवश्यक रहल बटोले बाट बाजुरा के सरमुकाम मार्तड़ी जोड़ना साफे बगर मार्तड़ी सड़क खंड अंतर्गत के गुईगाड़ा में स्टील ट्रक पुल निर्माण समेत अल्पत्र पर्ना स्टील ट्रस पुल निर्माण अल्पत्र पर्न निर्माण व्यवसाय है सड़क डिवीजन कार्यालय स्थापे बगर से करीब 18 करोड़ रूपया जरिवाना तिरेन कहलबा 15 वर्ष आगे समझौता हुई से फेन काम पूरा नहीं करके सर्वसाधारण नुकरण समस्या हुई तिरहल कहती कार्यालय से ठेक्का रद्द करके जरिवाना और क्षतिपूर्ति बाफत के रकम सरकारी खाता में दाखिला करना 35 दिने सार्वजनिक सूचना जारी करलबा सड़क डिवीजन कार्यालय साफे बगर के अनुसार राजेन्द्रा ठेगिम जेबी धनगढ़ी 4 कैलाली गुईगाड़ा पुल निर्माण के लक्ष्य में 2068 साल में नई सड़क विभाग से समझौता करल रहा 2070 साल में सावन मसान्ता भीतर काम पूरा कर सकना शर्त रले से फेन व्यवसाय उपकरण के लापरवाही के कारण 1.5 दशक भीतर लगल से फेन पुल निर्माण हुई निशकल बतागिल बा। हाल नेपालमा पश्चिम निम चापीय प्रणाली स्थानीय वायु के साथ नेपालके पूर्वी भूभागमा लगभग तल्लो वायुमण्डलमा रहल निम चापीय प्रणाली के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाएबा जेकर प्रभाव से हाल गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत के बाँकी हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलना कहलबा बाँकी भूभागमा आंशिक रूपमा मौसम बदलनबा आज दोपहर के कोसी और मधेश प्रदेश लगायत की देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बाकल से बाकी तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलन बा। खोज खबर माया घरी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका प्रे एफएम। नयाँ वर्ष 2083 सालको सबै शेर सदस्यहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। रानी जमरा कुलरिया शीत भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया शीत भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिगापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभा तपसिलको मिति स्थान र समयमा हुने भएकाले पूर्ण पार्षद जीवहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानि साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल वैशाख 27 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभा हल। समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 0915-61-022 र 98-68-43-53-62। अध्यक्ष कुमार राज शाही सचिव परशुराम महतो तथा रानी जमरा कुलरिया शीत भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
4: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो लिची कोला स्ट्रबेरी कुल्फी चोकोबार चोकोफनबार आहा कति मिठो मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ। अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
5: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि भर्दादेवी डेयरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 9854 89455 र 9863 69622।
4: रियल मिल्क रियल आइसक्रिम अमूल्य आइसक्रिम खोजी खोजी खाऊ। यी ब्रान्डका आइसक्रिमहरू जहाँ पनि उपलब्ध छ।
6: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000-75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
7: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: विश्रामपछि फेरि स्वागत। आठौं विश्वविद्यालयकै रिक्तक उपकुलपति नियुक्त केलक दरखास्त आह्वान गरल बा उपकुलपति छनौट तथा सिफारिश समिति से आज सार्वजनिक सूचना जारी करती दरखास्त के आह्वान गरलक हो। समिति के अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, माध्यमिक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय हो राजसी जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद के लग दरखास्त आह्वान करल बा। समिति से 10 दिन भीतर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के वेबसाइट में धरगिल और लिंक करा के दरखास्त पेश करना कहल बा। सरकार से जारी करलक अध्यादेश मार्फत ई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी पदमुक्त हुईल रह के लौअप नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेलक हो। रिक्त उपकुलपति पद के लग नाम सिफारिश करना गठित नाम छनौट तथा सिफारिश समिति से यह बैशाख 24 गते एकीकृत कार्यविधि स्वीकृति करल बताइल बा। ई कार्यविधि फिर मंत्रालय की वेबसाइट में धरगिल समिति से जनाइल बा। संवैधानिक परिषद से भावी प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम सिफारिश करल 533 प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायालय के नेतृत्व करना कहल बा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के अध्यक्ष बालेन्द्र शाह के अध्यक्षता में बैठल बैठक से बिफेबाद के दिन के भावी प्रधान न्यायाधीश के लाख सिफारिश करल पाछे अब न्यायालय के नेतृत्व करने जिम्मेवारी डॉक्टर शर्मा है आयल के हो। ओकाली से शुरूआत समेत हुई त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अभ्यास खेल अंतर्गत स्कॉटलैंड विरूद्व के खेल में नेपाल विजय हुई के हो। उपरोक्त मूलपानी क्रिकेट मैदान में हुईलक खेल में नेपाल एसे स्कॉटलैंड है 45 रन से पराजित करती जीत हासिल कर के हो। ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। दौलतपुर घटुआ में निर्माण होती रहल तटबंध के ऊंचाई के विषय में स्थानीय नागरिक संगठन के आपत्ति, पुरान ऊंचाई में तटबंध बने पर मांग। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर के सामाजिक परीक्षण अविन्फे स्वास्थ्य सेवा सुधार करे पर सुझाव। दूरपश्चिम में दशक एहर मानव वन्यजंतु द्वंद्व के 3300 घटना। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अभ्यास खेल में नेपाल एसे स्कॉटलैंड पराजित। भिट अबकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
9: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, गन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
10: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: डाक्टर आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688 र 98 25 67 77 72।
11: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो त जाने विचार छ कि नै त?
12: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मङ्गलसूत्र पन भाँची गयो।
11: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनाएको है, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइएला छन् त्यहाँ।
12: आज त सन्त्याका बाले मनकै पुरो हर्यो, त बाई जाउँ।
13: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 98 68 44 12 08, 98 4 86 39 261।
14: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
15: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि? ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
16: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
15: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
17: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584 89 213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
18: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ?
19: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, झक त राजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
20: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
21: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
18: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
22: टीकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
23: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
0: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टीकापुर।
22: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 98 4 84 48 673 र 98 14 68 02 04।
24: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज।
1: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: काहुल बाबू अपने कलका लाइत रही अपने काकर कलका लाइत रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाल बाटी
1: सुनी ना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटल रहले ही मर संग में सब पकड़ दर नी ना दादू हाली का करना होई एहि न सकते हो पता के नो बुगा कोले से हुई रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आता है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ यहाँ एक जना बाबू है ना सपा काट के ना इमरजेंसी पर गिल तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग चौराहा 100 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत्ते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी ना
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डालू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: लगा
3: दे दादू सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मन बचाई सकती था वो इन मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सकती था सांप डसलक मन न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैठ पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
7: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
6: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन लबाटी
7: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटोट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
6: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 ओ 98486 39261
8: लक्ष्मी आभूषण भण्डार नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक इष्टमित्र आफन्तजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो यहाँ एक नम्बर सुनबाट निर्मित आधुनिक डिजाइनका गरगहना पाउनुका साथै राशि अनुसार पत्थर पाउनुका साथै अर्डर अनुसारका गहनाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
9: सञ्चालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 98485 96 98 14 63 08 10 स्थान टीकापुर 1 सिद्धार्थ चौक कैलाली
10: अस्सी प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
11: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
12: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
10: डेलिभरीका लागि
12: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
10: टीकापुर कैलाली
8: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017 10 672
11: स्वास्थ्यका लागि पानी
8: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ दूध दही मही घिउ पनीर लस्सी आइसक्रीम लगायतका विभिन्न प्रकारका आइटमहरू पाइन्छ। लक्ष्मी आइसक्रीम एन्ड डेरी उद्योग टिकापुर एक बलभद्र चोक क्याम्पस रोड संचालक मदन राज न्युपाने सम्पर्क नम्बर 9848 49 97 84।
13: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
8: गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
9: हाम्रा विशेषताहरू
8: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने
13: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको
9: आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको
8: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने
13: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको
9: कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि
8: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार।
13: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा सम्पर्क फोन नम्बर 0915600059 र 9845017267।
14: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही वैशाख 26 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली।
15: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण सेयर सदस्य सेवाग्राही सञ्चालक समिति सल्लाहकार समिति कर्मचारी वर्ग शुभचिन्तक शुभेच्छुक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
16: अध्यक्ष कपर सिंह कडायत व्यवस्थापक एज्ञराज खनाल लक्ष्मीनारायण बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टिकापुर 6 नारायणपुर कैलाली।
9: वसन्त ऋतुको बहार सँगै नवीनतम सन्देश बोकेर आएको नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगति उन्नति सुख शान्ति एवं दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरिन्छ।
8: हाम्रो यहाँ एनटीसी एनसीएल का सिम कार्डहरू पाइनुका साथै फोटोकपी लेमिनेसन प्रिन्टिङ र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ। हराएको मोबाइल UMBS MBS प्रणालीद्वारा दर्ता गरिन्छ र मोबाइलका सम्पूर्ण पाठहरू पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ, साथै म्युजिक सिस्टम पनि उपलब्ध गराइन्छ।
9: लक्की ट्रेडर्स टिकापुर कैलाली सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा महिला जागरण बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभाव कार्य समिति बचतकर्ता कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
8: अध्यक्ष राधा रावल महिला जागरण बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टिकापुर कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस कटरास बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या, यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सनमा भए म त अब।
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ, कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
5: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी,
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98485518।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
8: खड़क स्मृति माध्यमिक विद्यालय में भर्ना खुल्यो,
9: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षा प्रेमी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक वर्ग लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। खड़क स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083का लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ।
8: खड़क स्मृति माध्यमिक विद्यालयका विशेषताहरू:
9: निशुल्क भर्ना तथा शिक्षण सेवा उपलब्ध भएको,
8: शिशु कक्षामा भर्ना भई नियमित विद्यालय आउने बच्चालाई निशुल्क विद्यालय पोसाक उपलब्ध गरिने,
9: विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्था भएको,
8: मन्टेसोरी तालिम प्राप्त शिक्षकहरूबाट नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा सिकाइ कार्य गरिने,
9: अडियो तथा भिडियोको माध्यमबाट सिकाई व्यवस्था भएको,
8: बच्चाहरूका लागि छुट्टै कक्षा कोठा तथा निरन्तर हेरचाह व्यवस्था भएको,
9: आरामदायी तथा शान्त शैक्षिक वातावरणको साथै टाटो चिसो पिउने पानीको व्यवस्था भएको,
8: बच्चाहरूका लागि खेलकुद तथा सिकाई सामग्रीहरूको व्यवस्था भएको,
9: विद्यालय विदा भइसकेपछि अभिभावक आएपछि मात्र बच्चालाई अभिभावक सँग घर पठाउने व्यवस्था भएको,
8: कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 3 सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट सिकाई कार्य गरिने, प्रधानाध्यापक झनकराज ओझा खड़क स्मृति माध्यमिक विद्यालय टीकापुर एक प्रहरी कार्यालयको पश्चिम तर्फ सम्पर्क नम्बर 9848443250 र 9814551434

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ लीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैखन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 98046 10186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रख गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: नया वर्ष को शुभ कामना
4: नया वर्ष सँगै नया योजना नया लक्ष्य र उज्जवल भविष्य तर्फ अघि बढौ नया वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: हिमालयन बैंक लिमिटेड परिवार टिकापुर शाखा टिकापुर कैलाली।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सक्कु ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज मुहिम टिकरी वो घोंगी बड़ा खैनास लगता कहाँ लीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खैनास मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैफन संगे जिन
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनकल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9806410186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो शेर सदस्य संचालक समिति सल्लाहकार समिति लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। आज भोलि हावाहुरी धेरै चल्छ त्यसैले आगो लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। आगो लाग्ने वस्तुहरू सुरक्षित राखौ र आगो जन्ने वस्तुहरू जथाभावी नफालौ। अध्यक्ष जीत बहादुर चौधरी सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार टीकापुर सात सत्ती कैलाली।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह र उमङ्ग सहित सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण कस्मेटिक भान्सामा प्रयोग हुने सामान यसै गरी जुत्ता चप्पल खेलौना प्लास्टिकका सामान सरसफाईका सामान र फास्ट फूड का सामान अब एकै ठाउँमा पाइन्छ।
0: सेभेन रेनबो मार्ट टीएमसी रोड जमरापुल नजिकै टीकापुर कैलाली संचालक भेन्टीराम चौधरी मोबाइल नम्बर 9845002008।
3: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो पाछसे सुरु करल मने घर सिर्जा सेक्ल
4: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्टा बनी हो ना ओट्टा फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
0: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा फ्यू ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोले फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: रमा के तिमीलाई थाहा छ नेपालको संविधानले शारीरिक वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने र सार्वजनिक सेवाको लाभमा समावेश गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ नि
4: ए हो र श्याम यो त कस्तो राम्रो कुरा
3: त्यति मात्र हो र रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनले त शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार यातायात र सूचना तथा संचार सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँचको सुनिश्चितता पनि गर्दछ नि
4: ओहो उसो हो भने त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानको लागि अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्न छिट्टै आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ
3: हो नि अपाङ्गताको पहिचान प्राप्त गरी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आफै अग्रसर हुनुपर्छ
4: अनि सेवा प्रदायक निकाय तपाईँ हामी सबैले उहाँहरूलाई सक्दो मदत पनि गर्नुपर्छ नि
3: सोरै आन सत्य भन्यो
5: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू असक्षम हुँदैनन् उहाँहरूसँग फरक क्षमता हुन्छ
6: साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके अधिकार तथा समावेशीकरण परियोजनाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: समृद्धि र सफलताको नयाँ ढोका खोलोस्। हरेक दिन नयाँ आशा, नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। खड्ग मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूल तथा वर्गिस होस्टेल परिवार, टिकापुर, कैलाली।
1: अस्सी प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
2: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
3: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
1: डेलिभरीका लागि
3: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल,
1: टिकापुर, कैलाली।
4: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
5: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आज महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ दिन हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैफन संगे जिन
1: चलो तो चलो
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बो सेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनुआ रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 98046 10186 थारू रेस्टुरेंट मुनुआ रोड टीकापुर कैलाली।

0: 2083 साल के पावन अवसर में सक्कू दादू भैया दीदी बहनिया समाजसेवी बुद्धिजीवी स्वदेश तथा विदेश में रहल सक्कू उनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: अध्यक्ष लौटन चौधरी, सचिव पंकज चौधरी, कोषाध्यक्ष शर्मिला कुस्मी, थारू कल्याणकारिणी सभा, क्षेत्रीय कार्य समिति, टीकापुर।

0: मोबाइल नम्बर 9854823220 र 9868880911।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौ, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइती। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजेसम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600095 ओ मोबाइल नंबर 9848423059।
4: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना दाग देख पर्लसे हात द्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा।
5: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहेफे लागसेक्ठा। कुष्ठ रोग कसंका लग्थेकि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँके जानकी 3 मानपुरमा सम्पर्क गरी
4: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घर पुरुष उग्र मद्दत गरी।
5: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिंग अस्पताल आईएनएफ नेपाल बांके से जनहित में जारी संदेश।
6: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। सल्यानमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुलक एकजनाकी मृत्यु हुँदा दुईजना घाइते हुलबाट जिल्लाकै दर्मा गाउँपालिका 2 फुसल खोला स्थित भित्री सड़क खण्डमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनैलाबाट शुक्रबार दिनकै करिब 1:30 बजे फरुला चौरमसे भूस खोलातर्फ जैती कलक रायक त 4495 नम्बरकै खाली ट्र्याक्टर सड़कमसे गरी 15 मिटर तर खसक दुर्घटना हुई रह। दुर्घटनामा ट्र्याक्टर चालक दर्मा गाउँपालिका 2 निवासी ग्वाजो कामीके 17 वर्षीय छावा प्रदीप विक गम्भीर घाइते हुल रहे। उहाँके तत्काल उपचार केलाक थुम्के सल्ली स्वास्थ्य चौकी के दर्मामा लगी रहे। स्वास्थ्यकर्मी उहाँकी मृत्यु घोषणा कलबाट दुर्घटनामा ओहो स्थानके 17 वर्षीय टेक बहादुर विक सामान्य घाइते हुलबाट उहाँकै शरीरकै धेरै सिन भागमा चोट लगलगो थुम्के सल्ली स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुटिरहल प्रहरी जनैलबा। अस्तमा 22 वर्षीय विशाल विककी दाहिन हात चोट लगलगबा उहाँकी अवस्था मध्यम रहलको थप उपचार केलाक नेपालगंज पठिलोबाट। घटनाकी जानकारी पाछा इलाका प्रहरी कार्यालय दार्मा सलाइनमा प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि साउदकी कमाण्डमा 3 जनाकी टोली घटनास्थलमा पुगल रह संग थप अनुसन्धान केलाक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमस्ते प्रहरी निरीक्षक देवराज भट्टराईके कमाण्डमा 5 जना प्रहरी खटलक प्रहरी जनैलबाट। सरकार संघीय संसदकै दुनु सदनकै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अनुरोध गर्न निर्णय कर्लबाट सम्बद्ध 2083 साल वैशाख 25 गते बैठक मन्त्री परिषदकै बैठक आगामी वैशाख 28 गते सोमबार दिनकै 4 बजे संघीय संसदकै दुनु सदनकै संयुक्त बैठक सम्बोधन गर्न हो।

0: वकालाक संसदकी सदस्य उपस्थिति आहन गर्न अनुरोध गर्न निर्णय कलबाट बैठक निर्णय सार्वजनिक गति नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल संचार कर्मी संघ गुटिलोबाट बैठक यही वैशाख 28 गते सोमबार मध्याह चार बजे बैठना संघीय संसदकै दुनु सदनकै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन केलाक राष्ट्रपति अनुरोध गर्न निर्णय समेत कलबाट बैठकके परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रस्तावमा विदेश स्थित 15 जना नेपाली अनरी कन्सल जनरल तथा कन्सल अलुगण पदयुक्त गर्न निर्णय समेत कलबाट अस्थंकरकै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै बाध्यकारी श्रम महासन्धि 1930 सम्बन्धी 2014 प्रोटोकल नम्बर 29 अनुमोदन केलाक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न निर्णय हुल्वा मन्त्री परिषद सोही मन्त्रालयकै अरू प्रस्ताव नयाँसम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1947 नम्बर 81 लाहा अनुमोदन केलाक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिन निर्णय कलबाट यही निर्णयकी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड हो श्रम निरीक्षण प्रणाली थप व्यवस्थित बन्न सहयोग पुग्न सरकारकै विश्वास रहल्बा खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टिका प्राइफेम
1: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ता बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहो घूम जाए था पाए
3: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
5: जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
4: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौँ नजम्ने तालुको रौँ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया गन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
5: डाक्टर आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिबार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772
6: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
7: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा संघीय संसद दुनू सदन के अधिवेशन यही वैशाख 28 गते सोमवार से शुरू हिटिवा राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े के मंत्री परिषद के सिफारिश में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दुनू सदन के अधिवेशन आगामी सोमवार दिन के 2 बजे सिंहदरबार में बैठनगर के आह्वान कल्लबाट संघीय संसद के नया भवन निर्माण सम्पन्न नई हुई जोफे प्रतिनिधि सभा की बैठक निर्माणधीन संसद भवन के बहुउद्देश्य कक्ष में हुईनावा राष्ट्रीय सभा के फे इनसे आगत संसद सचिवालय स्थित राष्ट्रीय सभा कक्ष के यह अधिवेशन संचालन हुनेवा नया संसद भवन निर्माण में संलग्न ठेकेदार कंपनी आगामी जेठ 15 गते संघीय संसद की संयुक्त बैठक में बजेट प्रस्तुत करना विलासम प्रतिनिधि सभा के कक्ष तैयार करना उपलब्ध करना मौखिक सूचना दिलक संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी जानकारी दिलबाट व्यवस्थित रूप में नया कक्ष में से बजेट प्रस्तुत करना पायोस्क के संसद सचिवालय फे अपेक्षा कलबाट निर्माणधीन प्रतिनिधि सभा कक्ष में हाल रंगरोगन आंतरिक सजावट तथा नवीनता उपकरण जड़ान लगायत प्राविधिक काम हुई वहां बोटीरबाट संसद के अधिवेशन में सरकार की नीति तथा कार्यक्रम तथा राजस्व को आय व्यय की विवरण बजेट प्रस्तुत हुई नवा प्री बजेट छलफल नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक आर्थिक विधेयक को राष्ट्र के ऋण उठेना विधेयक के ऊपर छलफल हुई नवा जनप्रतिनिधि के उपर निकाय के रूप में रहना संसद अधिवेशन के क्रम दैनिक जसिन हुईना आकस्मिक शून्य विशेष समय तथा प्रश्नोत्तर समय में सदस्य समसामयिक विषय प्रवेश कराके छलफल में भाग लेना हुईलबाट अधिवेशन के क्रम में पाशक समय जारी हुलक अध्यादेश में प्रतिष्ठान करना विधेयक सभा में पेश करना श्याख बोढ़िलोट सामान्यतया के बीच में जारी हुलक अध्यादेश संसद के पहिलो बैठक प्रस्तुत हुई नवा पहिलो बैठक बैठक मिली 60 दिन भीतर हो अध्यादेश के छिनोफानो हिपना अन्यथा आदेश स्वतः निष्क्रिय हुई नवा प्रतिनिधि सभा में हाल राष्ट्रीय सभा में से संदेश सहित प्राप्त 3 विधेयक हुईवा वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन संबंधी विधेयक 2083 प्रतिनिधि सभा में दर्ता राष्ट्रीय सभा में अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 विधेयक रहलवा अस्थक अध्यक्ष संवैधानिक निकाय के वार्षिक प्रतिवेदन हो नियमावली मस्यौदा समिति के प्रतिवेदन फिर प्रतिनिधि सभा में थाती रहलवा ए समाचार संखोज खबर बरल जनाए से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर फेकचो कैलालीकी टीकापुर भजनी के थापापुर में हाथले गुड़िया जनाव के आकृति बनाके 90 से डेढ़ बढ़ी महिला स्वरोजगार मासिक 10 से 20 हजार सम्म आमदानी कटी महिला सरकार के भन्सार कड़ाई में कैलालीकी व्यापारी के समर्थन धनगढ़ी में कालसे कांग्रेस के सुदूरपश्चिम प्रदेश स्त्री भेला ओ आगामी बजेट संघीय संसद के नया प्रतिनिधि सभा कक्ष में से लीटा बुकला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डीटी अबुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हेटू एक पाशा 6 बजे की खोज खबर सुन सकबी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनती रवि राम राम
8: आरएमई स्कूल टीकापुर में विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
0: नया वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी में सुख शांति समृद्धि र दीर्घायु को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टीकापुर में नया शैक्षिक सत्र 2083 साल का लागि प्ले ग्रुप देखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुले सहर्ष जानकारी गराइन्छ
8: आरएमई स्कूल टीकापुर कैलाली संपर्क नंबर 091561250 र 091560712
9: ओह त हेर बुढिया बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसुआ आयल कलश आब मुसुआ खुस्ती सब अफे आई सकता
10: ओहो हो निका सबक समझनो घरक आंगन पाजा झफास से बाहर से कच्चा का पहिल बा काट पना रह
9: अस्सी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना हो तेला रोटी पका कर बासी साई दूसरा सल परियार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
10: हुई था हो बुढ़वा असिन जाला मत ध्यान ध्यान पोहर झफास भी था मा ताप नुख बैठल रह सकते ना
9: वह उससे तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कु छू के पैठनी सेकना में चबटदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप पहना का उत्साह कम हो जाए
10: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
11: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ। यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसना पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुँदा बाहिर निस्कठ।
12: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रम फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ।
13: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैछ पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दैथा।
14: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
1: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलमा भर्ना खुल्यो।
15: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि पीजीदेखि कक्षा 12 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
1: गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलका विशेषताहरू:
15: 4 GPA ल्याउन सफल भएको,
1: SCEमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पास गराउन सफल,
15: डिजिटल प्रविधिद्वारा अध्ययन गराउने,
1: आफ्नै पूर्वाधारको व्यवस्था भएको,
15: साथै खेल मैदानको सुविधा भएको। गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल टिकापुर 1 कैलाली, प्रधानाध्यापक गजेन्द्र बुढा, सम्पर्क नम्बर 9848463601 र 9742390377।
16: खुसीको खबर, खुसीको खबर।
17: डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा यही वैशाख 26 गते चौथो शनिबारका दिन सिनियर कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डायबिटिज थाइराइड तथा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास रिजाल MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन आउने भएको हुँदा मौकाको फाइदा उठाई निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण उपचार र सल्लाहका लागि यो सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू: नयाँ पुरानो सबै किसिमको डायबिटिज, थाइराइड र मुटु रोगको समस्या, जोर्नी कम्मर टाउको दुखाईको समस्या, बाल रोगको समस्या, ग्यास्ट्रिक रोग, कलेजो, मृगौला रोग, नसा दुख्नु, सुन्निनु इत्यादि समस्याका साथै फिजिसियनले हेर्नु पर्ने सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार र परामर्शका लागि अग्रिम नाम लेखाई डाक्टरलाई भेटी आफ्नो समस्याको समाधान गरौं। स्थान: डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM नजिकै टिकापुर कैलाली। समय र मिति: यही वैशाख 26 गते चौथो शनिबार दिन बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क फोन नम्बर 9865740777, 0915602228 र 9809293315।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
2: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैना हो का
1: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओष्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुरा घुम जाए त था पाए।
3: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
18: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
19: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
2: गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासन र नैतिक मूल्यका साथ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता।
3: हाम्रा विशेषताहरू
2: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने
1: शान्त र अनुशासित शैक्षिक वातावरण भएको
3: आधुनिक शिक्षण विधिको व्यवस्था भएको
2: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिने
1: विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको सुविधा भएको
3: कक्षा सञ्चालन हुने मिति 2083 वैशाख 15 गतेदेखि
2: आफ्नो बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आजै भर्ना गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नै सफलताको आधार।
1: सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली प्रधानाध्यापक भरत कुमार तिरुवा सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-059 र 98-485-1767।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बातू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना कटा सुगुर बनेला बात आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहो रा घूम जाए ता था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
2: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक बुद्धिजीवी समाजसेवी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण शिक्षाको लागि आईटी कम्प्युटर टेक्नोलोजी सञ्चालक सञ्जय चौधरी मोबाइल नम्बर 98-48-69-60-20 पुरानो खाने पानीदेखि 100 मिटर तल। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा जगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफ्नो सम्पूर्ण शेष सदस्य सञ्चालक समिति सल्लाहकार समिति लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। जगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार जानकी छ जगतपुर कैलाली।
8: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य सेवाग्राही सञ्चालक समिति सल्लाहकार समिति कर्मचारीवर्ग शुभचिन्तक शुभेच्छुक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
9: अध्यक्ष निरपप भण्डारी व्यवस्थापक छविलाल जैसी जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली।

0: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा सुख शान्ति एवं समृद्धिका लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: इजा सप्लायर्स फडक चोकदेखि सिद्धार्थ चोक NMB ब्याङ्क नजिकै सरेको जानकारी गराउनुका साथै हाम्रो यहाँ विवाहका सामान, सुट, सारी र ग्यारेन्टीका गरगहनाहरू पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: इजा सप्लायर्स संचालक अन्जु बम, सम्पर्क नम्बर 9848 61 59 र 97 61 18 71। स्थान सिद्धार्थ चौक NMB ब्याङ्क नजिकै।
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा OPD सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ECG सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ENT सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600095 ओ मोबाइल नम्बर 9848 42 73 59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585018।

0: कापी रहिथ कबु पेन्सिल रहिथ कबु झलै फटाका आजिथ का कना हो बाबा फे होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइतिस जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुइ कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर मरलक रडगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला जसका टच बाटिन यी बुढक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुइ
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रडगैया झोला उद्योग में
2: रडगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373
4: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आईतवार बुधवार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: नया वर्ष 2083 साल के पावन अवसर में सबको ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दादू भैया दीदी बहनी हुकन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आस महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिलत
0: ए महीनो बड़ा खेना मन लागल बा चलो न जाए संगे टीकापुर में आजकल लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार मेर मेरा एक मिलत चलो जाए मैखन संगे जिम
1: चलो तो चलो।
0: हमारे यहाँ लौवा सेवा सुविधा के साथ में थारू परिकार उपलब्ध करा जाए जस्ते ढिकरी घोंघी लोकल मुर्गी के शिकार बॉयलर मुर्गी के शिकार मच्छी थारू परिकार कम्बोसेट नाश्ता के लग चाउमीन और ऑर्डर करल अनुसार नाश्ता उपलब्ध करा जाए। संचालक बंधन कठरिया ठेगाना मुनवा रोड जनक कल्याण बचत सहकारी संस्था के आगे फोन नंबर 9804610186 थारू रेस्टुरेंट मुनवा रोड टीकापुर कैलाली।
1: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर सदस्य मानुभाव कार्य समिति बचतकर्ता कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष भरत रावल उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर रावल सचिव पुष्पराज केसी व्यवस्थापक दीपक बहादुर थापा र टीकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा ग्राहक कार्य समिति कर्मचारी इष्टमित्र शुभचिन्तक लगायतका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष खड्क बहादुर धामी टीकापुर साना सहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था परिवार टीकापुर कैलाली।